ओम सदीप नंद भगवान की जय। श्री देवेश्वरमती की जय। श्री श्यालकपुरी मायोक्षित की जय। श्री स्वामी भगवान की जय। विश्व कृचि मामलेश्वर परमंसुगिरा श्री स्वामेश्वर नंजी गुदीव की जय।

0: जय हो।
1: समय बड़ी कीमती है भजनों सजनों, मारो एक ही भजन है क्यों आप प्रचार करे सामराई गौ माता रो। ये नर्तन जो तुझको मिला है यूं गमाने के काबिल नहीं है, हर सांस अनमोल हीरा है यूं लुटाने के काबिल नहीं है। गाय जिंदे जी सेवा कमाए, गाय जिए जीते दूध देवे, दही देवे, घी देवे, गोबर देवे, गोमूत्र देवे, और मरने के बाद भी उसका हड्डी और चमड़ी काम आवे। मिनख मूंगो जान राखे मिनख पणो, मिनख मूंगो जान राखे मिनख पणो, सब जीव आप समान जाने आप तणो, गुण बिना पशु समान अजिया गलतनो। मिनख मूंगो जान राखे मिनख पणो। तो गाय जिंदे जी सेवा कमाए, मरकर भी काम आए, नर तेरा जिस्म मरने के बाद काम आने के काबिल नहीं है। इंसान को गणित समय को लू टाइम इज मनी, समय ही धन है। क्यों मैं एक भजन रखी हो आपने, इंसान को इंसान होना नहीं आया। हंसते तो सभी खिल खिल, पर दूसरों के दर्द पर रोना नहीं आया। बाहर से कपड़ा सभी धोते हैं, अपना अंतकण धोना नहीं आया। भर पेट तो सभी खाते हैं, आगे के लिए कुछ बोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, मगर आज तक गोना नहीं आया। यानी सद्बुद्धि को नहीं आई, गाय के प्रति आस्था को नहीं आई। भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में, भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में, गड़कर के निज देव बिठाया तुम्हारे सीने में, इसको छोड़कर लगे हैं मृग जल को पीने में, अंतर आत्मा को छोड़ भटकते काशी मक्का मदीने में। सुजनो भगवान ने दी ऐसी सुंदर काया, तेरे लिए क्या क्या बनाया, पर तू उस दाता को भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा, गौ माता के प्रति कोई संत आश्रम में, कोई अनाथ आश्रम में कोनी पैसा खर्च रहे, दुर्व्यसन में पैसा खर्च करे लोग। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा, ये मिले अनमोल बिना मोल सत्संग, पर तू इसमें जाने के काबिल नहीं है। बरा ये सत्संग का दरिया नाइलो जिसका जी चाहे, जिगर है दाग पाप का धोइलो जिसका जी चाहे। झूठ बोले गप्पे उड़ाए, गंदे गीत मस्ती से गाए, भगवान का कीर्तन कौन करे, सदगुरु का गुणगान कौन करे, अशुद्ध गीत गावे, मुनि बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। झूठ बोले गप्पे उड़ाए, गंदे गीत मस्ती से गाए, अब ये तेरी जीभ प्रभु के गुण गाने के काबिल नहीं है। हाँ सोच ले, एक दिन रोना पड़ेगा, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। सोच ले, एक दिन रोना पड़ेगा, नरकगामी होना पड़ेगा। होगा जो तेरा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। फालतू सिर पर बोझ लिए फिरते, बार बार जन्मते और मरते, तेरा मस्तक हो गया इतना बोझिल जो संतों के आगे झुकाने के भी काबिल नहीं है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है, पर तूने माँ बाप की सेवा नहीं की तो तू दुनिया में आने के काबिल नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो, दिल में दया आंख में शर्म होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो, दिल में दया आंख में शर्म होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी में जीने का यही तरीका है दोस्तों, ने तो खुद उदास रहो और ने दूसरों को उदास रहने दो।
0: हो
1: जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए, मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना अगर जिंदों में है वो जिंदगी क्या काम की जो अपना जीवन नहीं बदल दे। जिंदगी में जीना है तो जीने की यकीन कर, सूर्य आसमान पर इसे ले आ जमीन पर, एड़ा सत्य कर्म कर, माता पिता की सेवा कर, गौ माता की सेवा कर, तो सूर्य तारा पहुंचू मैं। यूं ब्रह्मानंद समझावे, बार बार नर्तन नहीं पावे, ऐसे सु अवसर को गमावे तो तुम मोक्ष पद पाने के काबिल नहीं है। खूब महापुरुष पधारिया, समय बड़ी कीमती है, टाइम इज मनी एंड मनी इज गोल्ड। अब मैं इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलो गौ माते की
0: जय हो।
1: साध्वी जो को पधारिया वारू, आप जो मन संचरण करना, जो आपने नाम लेवे, जो आप भजन सुनता रहे, जो साध्वी जी आप खूब भजनी पधारिया, आप अपरा विचार रखिए, आप अपरा प्रवचन, आप अपरा भजन। बोलो राम जी महाराज की
0: जय हो। गावना दो जय हो, आप रो कहना मान है।

0: अनंत कोटि के महापुरुषों की
1: जय हो। अमर वे गया, अमर वे गया।
0: जो मरा श्री बे मन संचालन जो इज्जत दे सबकृत दे त्यों भजन सुनावता रहे लोग आप प्रेम सुनता रहे जो
1: जय बोलो गो माता की।
0: यूं है गौ माता ने गौ माता जकारे घर में गौ माता है और जकारे घर में तुलसी को पौधो है और जकां के घर गुरु महाराज की मूर्ति है वो ही घर हिंदू धर्म की संस्कृत में सनातन धर्म में गिनती में आवे और जकां के घर में गाय नहीं है तो सुजनो घनी व्याख्या नहीं करूं मैं थोड़ी सी भजन गाऊं नाला ज्यादा है टाइम इज मनी। मैं आप बात बार बार कहूं कि समय धनेर मैं ही ज्यादा बेलड़ा उड़ोदन उचित कौन लागे छोटी सी बात है बड़ी मार्मिक बात है जीवन में काम आवेला। राजा भरतरी जिन टेमरा जोग ले राजपाट ने परित्याग कर दियो राजा भरतरी चक्रवर्ती सम्राट हो
1: जय हो।
0: गोपी चंद और राजा भरतरी मामो भांजा हा तो राजपाट ने उजीन नगरी ने परित्याग कर वन में निकल गो। भगवान भी परीक्षा लेवे स्कूल में बच्चों पढ़े मेरी मास्टर परीक्षा लेवे अर्धवार्षिकन वार्षिकन परीक्षा में पास रहे तो अगली क्लास में एडमिशन है फेल रहे तो एडमिशन नहीं है। तो वीन तेरे भगवान भी परीक्षा लेवे कि इरो वैराग्य सच्चो है या कच्चो है। तो सजनो महीना डोढ़ महीना तक राजा भरतरी ने अन्न कौन मिलियो महीना डोढ़ महीना तक हाँ वो वन में फल फूल जी में और नदी सरिता में पानी पियर भजन करे जिसके लागी नाम की नैन बेण कह देता है। एक दिन संयोग को बड़ी मार्मिक बात है ध्यान एक दिन संयोग ने सुको रोटी को टुकड़ो मिलियो चार आंगल वो क्यों आज अन्न देव भगवान दर्शन दिया है आज आप भोजन करा जबकि 45 दिन तक अन्न कौन मिलियो 45 दिन तक वो प्रेम भी भोजन ग्रहण करन पाचो भजन में बैठो तो भी नगरी को एक शासन करने वालों राजा हो आपरा कामदार ले वन में घूमने वास्ते गियो वो राजा भी राजा भरतरी ने सुको टुकड़ो ने खावतान देखियो जन आपरा कामदार ने कियो ओ कोई मगतो है कोई भिकारी है सुकोड़ो टुकड़ो कोई देन किया बढ़िया कहीं टकूनी लाया जो कोई तो खावे इर्दी तो कोई मगतो है ही कोनी भूखा मरे है ते जा इन कह दो के माने राजा के दरबार में चलो मां के राजा का गढ़ में चलो तने दपाई जिमाई दे वहां भरपेट भोजन करो क्योंकि तुम भिकारी है। वो कामदार जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म है आठा कोनी कोई राजा है लेकिन उसे मालूम नहीं था वो जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म है तुम भूखा मरे तुम भिकारी है मैं तो उनका हूँ भिकारी हृदय की जोड़ी भक्ति का देन दान मैं मांग रहा हर वारी मैं उनका हूँ भिकारी मेरी मोक्ष उसी दिन हो गई जब गुरु मिले शुभकारी अब आवे तो मैं सबकी कर दूं चाहे आ जाए जग सारी मैं उनका हूँ भिकारी बात मत ओटला तुम भूखा मरे तुम हाल माने गढ़ में जीम ले थारा राजा ने पूछ के मन क्यों जिमावो और राजा साहब वो निमंत्रण स्वीकार कौन करे बोध के मन क्यों जिमाओ अरे क्यों कहीं जिमाओ राजा ने धर्म रे जकाऊ जिमावे तुम भिकारी है तुम मगतो है तुम भूखा मरे धर्म रे जन थार राजा ने जाय पूछ के धर्म की माँ कौन है धर्म री माँ कौन है अरे वो स्वीकार कौन करे बो के धर्म री माँ कौन है वो राजा भी बुद्धिजीवी हो बो कि धर्म री माँ है दया मन थर माता दया आई जनी तुम्हें जिमाऊ वाजन था राजा ने और जाय पूछ के जन धर्म रो बाप कौन है अरे राजन वो माने कौन वो के धर्म रो बाप कौन है जन वो सोच ली मन में आपा इन्हें भिकारी समझा भिकारी तो कौन है आ तो चीज तो कोई हीरो तो कोई दूसरो ही है जाय देख के बीर नूर पहली मरा श्री हटे भाई क्या करिए नी वो भगवा बेग एक अग्नि है इमें सब चीज जले ई वास्ते बिरु नूर अबार आला साधु संत के में कोई आलोचना तो कौन कौन आगला संत महात्मा बसम लगावता शरीर के बसमी ताकि शरीर भूडो लागे डाडी यूं बंडावता ताकि कुरूप दी के शरीर बने शरीर ने सजावता कोनी बबूती लगाई ली तो कहीं बीर नूर बीर तेज कोई छानो थोड़ो ही हो तारों की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं सूर्य छिपे नहीं बादल छाया रण चढ़े सूरवीर छिपे नहीं दातार छिपे नहीं गर मंगत आया चंचल नार का नैन छिपे नहीं प्रीत छिपे नहीं पूट दिखाया ये योगी का बाना अनेक करो पने कर्म छिपे नहीं बबूत रमाया जाय प्रणाम करण की ओसा धर्म की माँ है दया और धर्म को बाप है संतोष क्यों जन राजा मनी चार अंगल टुकड़ा में संतोष है जो दस बीस पचास बयसत हो हजार तो लाख मंगेगी जो दस बीस पचास बयसत हो हजार तो लाख मंगेगी कोटि के अरब खरब बये तब द्रौपदी होने की चाह जगेगी उदय अस्त लो राज मिले तो तृष्ण अधि की आगे लगेगी सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कभी ना भगेगी तो संतोषम परम सुखम गुरु का वचन सदा सिर ऊपर अखे अमर धुन लागी मसंदर प्रताप जति गोरख बोले वो जोग लियो बड़ भागी भरतरी राजा भूप बयो वेरागी इतना कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ अचानक में कोई आ जाए उसे मेहमान कहते हैं भूख में कुछ मिल जाए उसे पकवान कहते हैं करे किसी निर्धन की मदद उसे धनवान कहते हैं करे जो गौ माता की सेवा वो महादान कहते हैं करता जो माँ बाप की सेवा उसे संतान कहते हैं जिन्होंने अपने आप को जान लिया उसे इंसान कहते हैं आर्ट इज लाइफ
1: जय हो ढोलक वाला पधार ने ढोलक हाँ ढोलक बजावा होने ढोलक बढ़िया ढोलक बजा Thank you.

पीला बुसरट वाला पधारो सा, ढोलक बजाय वास्ते पधारो, पीला बुसरट वाला। ओ मारसा, आओ ढोलक बजाओ आओ। अशोक जी ढोलक वाला, चलो ढोलक बजा दे।

0: बोलो दीपनाथ भगवान की
1: जय हो।
0: बोलो माधव कृष्ण भगवान की
1: जय हो।
0: विश्व गुरु महेश्वरानंद जी महाराज की
1: जय हो।
2: हेलो प्रथम

0: ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

बन इसी मंत्र से होवे मंजन इसी मंत्र से मन मंजन श्री दीप निरंजन शबद जन प्रभु दीप निरंजन सब दुख

जन शबद जनै सीमन होवे मन मंजन ऐसी मंत्र पे मन मंजन श्री दीप निरंजन सब दुख बन प्रभु दीप निरंजन सब दुख

कबन प्रभुदीप निरंजन सबदो। श्रीदीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।

श्री हरे भगवान की जय देवेश्वर महादेव की जय स्वामी माधवानंद सकृदेव की जय विश्वगुरु महामंडल स्वामी महेश्वरानंद जी।

ओम जय गुरुदेव निरंजन दीन अनेतकारी शुभ सिंह लदिस श्रीदेव नारायण भगवान की जय।

0: सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म जो नरवाण नोग्रा नीच जाने नहीं
1: ये तनाविशकी
0: बेलड़ी गुरु अमृत की कार शिष्य दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक ने नचको राष्ट्र पहाड़ निरकतर हो गुरु चरण का

शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनं दीपनं सजते सर्वं संध्या दीपं सर्वसत्यम्। ओम शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माध्वानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे। A colorful day, the day which begin with peace, harmony, love, understanding, kindness and spirituality. Today and yesterday evening we were celebrating a festival called Holi. Yesterday, the day where the Holi was burned, it means the darkness disappeared, light come. Asuri Shaktis

0: दीप नारायण भगवान की
1: जय,
0: देवेश्वर महादेव की
1: जय,
0: माधव कृष्ण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: नरसिंह अवतार भगवान की, भक्त और भगवान की
1: जय।

दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की, अलकपुरी जी।